टुक टुक टुशी वाले वक्त से मम्मी करता इला टुक टुशी माले का वक्त लोगो अंगे कागज वाले का वक्त था टुक टुम हक खले वक्त से मगामी चानी चिन्नी अगर पियो मिटा कुन्न कामी तान नुली अंगे इल्लुक टुआ रोंग मत खुके रख टुक से टुडी जाओ से मगामी तान अली टुक टुशी मगामी या खंगोले नेमा कितंगी मत किया पलक तलक